द्वारक वासी श्याम है शिरडी में आए, शिरडी वासी श्याम है परती सत्य साई, बोलो राम साई राम, बोलो सत्य साई राम।